गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप में गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है

0: बाद चले जाने।
1: वाहेगुरु
2: वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु।

जनन पिता लोक सुत बनिता, कोय न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काहे मन भाव करिया। ऊड़े ऊड़ आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खुलावै, कवन चुगावै, मन में।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतोह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी दुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान होई आसा महला चौथा तू करता।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता। खिल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहि, सुरसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई।

सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के

पूरे दुख रोग संताप तरे सुनी सची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राखि उरतारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।

हमरी गणत न गणियां काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे अपने का, हाथ दे रखे कर अपने, सदा सदा रंग माण, हमरी गणत

0: एक माई जुक्त व्याई तिन चेले प्रवान
1: संसारी
0: एक लाए दीपान आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस कर कर विखे सुरजन हार नानक सच्चे की साची कार एक दूजी पौ लख हो लख हो वह लखवीस
1: एक
0: राह पद पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राज माल मन सोर जिस हाथ जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए
1: पवन पानी अग्नि पाताल
0: इस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम।

0: गए हो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
1: पानी
0: भर में घाट घड़िया रूप रंग के वेश
1: केते
0: इंद चंद सूर केते केते मंडल देश
1: केते
0: देव दान मुन केते केते रतन समुंद
1: केतिया
0: सुरति सेवक केते नानक अंत नंत सर्व खंड की बाणी रूप तिथ है घाट घड़िया बहुत अनूप
1: तिथ
0: है घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथ है घड़िया सुरा सिद्धा की सुध।

0: नाथ निरसंगी प्रमाथे
1: नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: यह नामे समस्ती स्वरूपे
1: पपंगी परमाते समस्ती बबूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वर परम विद्धे
0: नमो शस्त्र बाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम
0: क्रूर कर्मे
1: नमो
0: रोग अर्ता नमो राग रूपे
1: नमो
0: दान दाने नमो मान मान्य
1: नमो रोग रोगे
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परम परम परमेश्वर प्रोच पालन अचेदी अपेदी नामंग कामंग तेरा जोर चाचरी छन जले हैं तले हैं बीत है पे है
1: प्रभु है
0: भुजंग प्रयात छंदे अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूप नमस्तुं निर्माते नमस्तुं प्रमाते नमस्तुं काले नमस्तुं अपाले नमो राज राजे नमो साज साजे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
2: नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व
0: ज्ञान नमो परम
1: नमो
0: सर्व दर्शन नमो सर्व कृष्ण नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी चर्पण प्रसादन वृत कर्मे अनवृत कर्मे अचल राजे अटल सच सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं
0: देवं सर्वं पेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: वाजन द्व प्रसादाद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार
1: सर्वमात्रमान देव पेव आदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल नाम धाम न जात जाक रूप रंग न रेख देशो न बेजक रूप रेख न राग नाम काम पहीन पेकद ताम हुन जाहे एक मूर्त नेक दर्शन कीन रूप अनेक देव न जाने जब दौर कतेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन लोक चौदह के बिगे जग जाप ही जे जाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख पार कालहीन कला सुचुकत काल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप मीक अनुस्तत एक पुरख दूत अंगहीन अपंग नाथ में पुरख पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नित मधुवार जन त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार गो प्रकाश निजन नास राजान राज पानान पान इंद्रान इंद्र बालान बाल अनपूत अंग अंग मुनगन प्रणाम निर्वैन काम आलस्य करम अदृश्य धर्म चाचरी जन त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंगे अकमे गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंगे अकमे भुजंग भरिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र
0: काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र माने चतर चक्र दाने
0: चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परम न पितर
1: न कर्म न काय जन्म न जाए
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र
3: अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है
4: अचलन अनंग है कि हम तो अपंग है
3: मधु
1: पार छंत्र प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गन मुदाम
2: हर भर अखंड हर नर प्रपंज
1: अन गन प्रणाम मुन मन सलाम
2: हर नर अखंड भर नर अमंड
1: अन पव अनास मुन मन प्रकाश
2: गुण गन प्रणाम जल थल मुदाम
1: अन छिच अंग आसन अपांग
2: उपमा अपार दस में तो दार
1: जल थल अमंड दिस विश अपांड
2: जल थल महंत दिस विश बेअंत
1: अन पव अनास ते तर तुरा
2: आ जान बाहु एक सुदाहु
1: ओंकार आद कथनी अनास
2: खलखंड के आल गुर भरे अकाल
1: कर प्रणाम चित चरण नाम
2: अंचित गाता जिजना बात
1: अंजज गात अनरंज बात
2: अंटुंड पनार अंडठ पार
1: अडीट तरम अत डीट कर
2: अनवर्ण अंत दाता महंत
1: फिर बोल मना चंत्र प्रसाद करुणालय है अर कालय है
2: खलखंडर है मैं मंडल है
1: जगदीश्वर है परमेश्वर
2: है कान है चरभुवन है
1: त्रित के तन है जग के कन है
2: मन मान्या है जग जान्या है
1: सर्वन पर है सर्वन कर है
2: सर्वाचा है सर्वनाचा है
1: करुणा कर है बिसंबर है
2: सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
1: ब्रह्मंडस है कलखंडस है
2: पढ़ते पर है करुणा कर है
1: अजपा जपे थप्पा थपे
2: अत्ता कृता अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करुणा कृत है
2: अत्ता कृता तरनी कृत है
1: अमितेश्वर है परमेश्वर है
2: अत्ता कृता अमृता अमृत है
1: अजपा कृत है अमृता अमृत है
2: नरनायक है खलकायक है
1: बिसंबर है करुणालय
2: निपनायक है सर्पायक है
1: पंजन है अर्गंजन
2: है रिप्तापन है जप जापन है
1: अकलन कृत है सर्वाकृत है
2: कर्ता कर है हर्ता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है
2: आत्म भास है जस के जस है
1: भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
2: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेज
2: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
1: नमो राजंता राजसन तामसन सात रूपे
2: नमो परम तन तंग तन तन स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
2: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
2: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे
2: नमो इंद्र इंद्रे अनादं प्रभुते
1: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
2: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनमे
2: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
1: एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
2: अबू अजू अनास अकास
1: अगंज अपंज अलख अपाक
2: अकाल दयाल अलेख पेख
1: अनाम अकाम अगा अडा
2: नाथे परमाथे अजोनी अबोनी
1: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
2: अकर्मवा परमवा गंजे अलेखे
1: भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
2: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
1: कामन बेपूते समस्तुल स्वरूपे
2: कुकर्म प्रणासी सुकर्म प्रभुते
1: सदा सचदानंद सत्रन प्रणासी
2: करिमल कुनिता समस्तुल निवासी
1: अजाय विभूते गजायब गनी में
2: हरियम करियम करिमुल रही में
1: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते
2: शंभम शुभम सर्वदा सर्वजूते
1: दुकालन प्रणासी दयालन स्वरूपे
2: सदा संगे

0: का सदगुर प्रसाद पातशाही तस्मी त्वय प्रसाद सवैये श्रावक सुत समूह सदान के देख फ्रयो कर जोग जिति के
1: सोर श्रादन सुद सुदाद संग समूह अनेक मति के
0: साए ही देश को देख रहे मत को न देखियत प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपाओं ते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जर जर संग नूप तंग सुरंग सवारे
1: और तुरंग कुरंग से पूतल पौन के गौन को जात निवारे
0: भारी पुजां के पूबली बिन्यावत सीस न जात बिचारे
1: एके पहे तो कहा पूपति अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: जी सब देश दिशान को बाजे तोल मृदंग निगारे
1: गुंजत गोड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: पुआन के पूपत कौन ग्रहणी जात बिचारे
1: श्री पा श्री भगवान पजे बने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दया धूमधाम सुसंजम नेम अनेक बिसेख है
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के पेख है
0: जति जतार सब सब चार हजार के देख है
1: श्री भगवान पजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है
0: सपा दुरन दुबा सुसात सना दु जान लेंगे
1: पारिक मान परे मन में कर पर्वत पंकल न हलेंगे
0: माते मतंगन मान लेंगे
1: श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरियार बिचारे सार की तार पचैया
1: तोर देश मन नम वासन माते के जान के मान मलैया
0: गड़ान को तोड़न हार सो बाते नीच चाल वैया
1: सब श्री सब को श्रीनायक जाचक ने एक सु एक दवैया
0: दानव देव ने निसाचर पूत पुएक पुआन जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: तापन बाट जय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे
1: सात समो पर सन फिरे जल सदस सबे अवलोक जपेंगे
0: मानव इंद्र की जिंदन रात जोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोर स्नान गजायक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: परमेश्वर बिसन सच्ची पद अंत से जम पास भरेंगे
1: जे नर श्री पद के प्रास है पद ते नर फिर न दे धरेंगे
0: प्यो जो दो लोचन मुद के बैठ रहे भक्तियां लगायो
1: ना फिरियो ले सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो
0: आस के उपख्यान सो बैठ के ऐसे सो बैस बतायो
1: सात को सुन लियो सबे दिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहू ले पाहन पूछ तरियो सिर काहू ले लिंगरे लटकायो
1: काहू लिखियो रवाची दिशा में काहू पिछा तो सी सिन

0: ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तब प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बार गनी मन गारे
1: समय सबको प्रतपारे
0: मुखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे
1: दीन दयाल दयानी दुखन देखत है पर देत नहारे
0: राहत है दुख दोखन को दल दूज

से चतुरानन से रुम नारक से सब हूँ मिल गायो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनातन।

0: सच पूरे गुरु उपदेशिया नानक सुनावे।
1: जा तू मेरे वल है ता क्या मो छंदा,
0: तू सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा।
1: लक्ष्मी तोट ना वही खाए खर्च रहंदा,
0: लाख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा।
1: मेरी मित्र सब की त्यान है मंगे मंदा,
0: लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा।
1: आनंद पिया सुख पाया मिल गुरु गोबिंदा,
0: सब खास सवारी है जा तुद पावंदा।
1: हे सस हे करना निद मेरे मेरी अबे बिनती सुन लीजे,
0: और न मांग तो तुम ते कर चाह तो चित में सोई कीजे।
1: शस्त्रन सुवत हीरन पीतर जूझ मरो कै साज पतीजे,
0: संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है बर दीजे।
1: हे शिवा बर मोए है शुभ कर्मन ते कहू न डरो,
0: ना डरो और सो जब जाए लो निश्चय करे अपनी जीत करो।
1: सिखो अपने ही मन को वह लालच हो गुण तो चरो,
0: जब आग की और निदान बने हिरण में तब जूझ मरो।
1: जीव तय को जग में मुक्ते हर चित्त में युद्ध बिचारे,
0: दे अनित अनित है जस नाव चढ़े पव सागर तारे।
1: नीरज ताम बनाए तन बुत्सों दीपक।

0: जहाँ का किया सब कुछ होए तिसते बाहर नहीं कोए।
1: कहो बिनंती अपने सतगुरु पाहे काज तुम्हारे दे निभाहे रहाओ।
0: सत्य ऊर्जा का दरबार सगल भगत जा का नाम आधार।
1: सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी।
0: जिस सिमरत दुख डेरा टहे जिस सिमरत जाम किछ ना कहे।
1: जिस सिमरत होत सुके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे।
0: संत सभा को सदा जय का।